हमारे फिर रंग रंगारे एक तिलपी ना तेरी जय। प्रभ स्यों मन लीना ज्यों जल मीना चातरक देवे दसंती जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बजंती जा। जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बजंती जा। सो कौटन गुर सेविया एनस सहज सवाई दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसमदी नूर अरसों कुरसों झटिया तुर डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया।

मरण दुख न सा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ध्यान सुख फल पायन आठ पहर अराध है तेरी शरण तेरे परवास है पंच दुष्ट लै साधे ज्ञान ध्यान किछ कर

0: नानक जन कल राखे मेरी, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुर नानक जन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवां, जिसके सिर उपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीतन आवे। मेरे राम राय तू संतां का संत, तेरे तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभाव निरवैर, अकाल मूरत अजूनी, सैभं गुरप्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होती की सच, सोचे सोच न हो गई, ये सोचे लख वार,
1: चुप न हो गई, जे लाए हाल वतार,
0: भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरिया भार,
1: सियाण पालख होहे ता इक ना चले नाल,
0: केव सचियारा होइए केव कूड़े टुटे पाल,
1: हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल,
0: हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाई,
1: हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई,
0: हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाइए,
1: इक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा पवाइए,
0: हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई,
1: नानक हुक्मे जे बुझैता हो मैं कह न कोई,
0: गावे को तान होवे के चेतान, गावे को दास जाने निशान,
1: गावे को गुण वडियाया चार, गावे को विद्या विखम विचार,
0: गावे को साज करे तन खेहे, गावे को जील ले फिर दे,
1: गावे को जापै दिसै दूर, गावे को वेखै हदरह दूर,
0: कथना कथी न आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट,
1: देदा देला दे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे,
0: हुक्मी हुक्म चलाहे राहु, नानक बिगसे बे

0: असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास
0: असंख भक्त गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख

0: जो तुझ पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार।
1: असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर,
0: असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड त्याग माहे,
1: असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कुड़े फराहे,
0: असंख मलेश मल पखाहे, असंख निंदक सिर करे पार।
1: नानक

0: असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
0: अखरी लेखन बोलन बाण अखरा सर

0: को थाउ
1: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार
0: जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार
1: पर यह हाथ पैर तन देहे पानी तो तय उतरस खेहे
0: मूत पलीती कपड़ होए जे साबुन लईजे ओ तोए
1: पर यह मत पापा के संग ओ तो पैन

0: सर्वहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता नमो नर्कनाशेषदैवं प्रकाशेन अंगं स्वरूपे अभंगं विभूते अनंगी नामे द्रभंगी दृगामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे
1: न पुत्रे न पुत्रे

0: नमस्तल पर नामे समस्तल पर नासे अगंजला नामे समस्तल निवासे
1: स्वरूपे को
0: कर्मंग पर नासी सो
1: धर्मंग
0: सदा सचिदानंद सतरंग पर नासी करिम।

0: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है।
1: आपाद मुझे उभरे मरण काल का त्रास सुनवरे
0: जो सदा हमारे पच्छा सिरिया सुजो करे हो रक्षा
1: राख लियो मोय रखनारे साहिब संसहाय प्यारे
0: दीन बंद दुस्तन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा
0: काल पाए

गुरु प्यारी साध संगत जी, सचे पातशाह जी ने अमृत वेले तो बख्शिश की है। अपनी पवित्र गोद का आनंद सचे पातशाह सानू सभना नू बख्श रहे ने। धन्यवाद है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जिन्होंने अपने चरणा कमलों के अपनी गोद दे विच बैठ के बाणी पढ़न का आनंद मानन का सुभाग समा बख्शिश किया है। सचे पातशाह ने जो अज का हुक्म बख्शिश किया अमृत वेले तो सूही महला पंजवां सूही राग दे विच गुरु अर्जन पातशाह

मिलियो मनो और सर्ब सुखैना त्याग न कतमू जाए। अनक अनक पांत बो पेखे प्रै रोम न समसर लाए, मंदर भाग सोव दुआरे अनहत अरुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे ग्रह प्रै अतिथि सद्धाए। देवंगदारी पंजवा दर्शन नाम कहो मन आचै भरमायो, है सगल दान रे आए परयो संत पाचै रहाओ। किसो सेवी किसे अराधी जो दिष्टै सो गाछै, सा संगी सरणी परिय चरण रेन मन बादशै। जुगत न जाना गुण नहीं कोई, महादुत्र मैं आछै महादुत्र माए आछै। आए परयो आए पयो नान गुर चरणी तो उतरी सगल दुराशै। देवंगदारी पंजवा अमृत प्रै बचन तुहारे, असुंदर मान मोहन प्यारे सबू मद निरारे रहाऊ। राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कमलारे, ब्रह्मे सिद्ध मुनिंद्रा मुर ठाकुर ही दरसारे। दीन दुआरे आयो ठाकुर सन परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिलै मनोहर मन शीतल बिगसारे। देवंगदारी महला पंजवा हर जप सेवक पार उतारियो, दीन दयाल भय प्रभ अपने बौड़ जन्म नाही मारियो रहाओ। साध संगम गुण गावह हर के रतन जन्म नहीं हारियो, प्रभ गुण गाए बिखै बन तारे आ कुलै समूह उधारियो। चरण कमल बस्यो हृदय पीतर सास गिरास उचारियो, नानक कोट गई जगदीशर पुनः पुनः बलिहारियो। राग देवगदारी माला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरै बन भेख मोहन रहत निरार रहाओ। कथन सुनावन गीत नीके गावन मन मैं धरते गार। असुंदर बहु चतुर सियाने विद्या रसना चार, मान मोह मेर तेर विवर्जत ए मार्ग खंडे तार। कहो नानक तिन भव जल तरी अले प्रभ कृपा संत संगार। राग देवंगदारी महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मैं पेख्यो री ऊचा, मोहन सबते ऊचा न समसर को लागे ढूंढ रहे हम ऊचा राओ। बाओ बेअंतत बड़ो गाहरो, थाओ नहीं अगूचा तोल न दुलिया मोल न मुड़िया। गत पाइया मन रूचा खोज संकान, गत पंथा बिन गुर नहीं पहुचा। कहो नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पुंचा। देव गंधारी महला पंजवा मैं बहु बिद पेख्यो, दूजा नाही री को खंड दीप सा पीतर रवे अपूरे सब लो राओ। गमा गमा कौन महमा, मन जीव है सुन सो चार आश्रम चार बरना। मुक्त पै सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया, परम पद पाया दुतिया के सुख हो। कहो नानक पाव सागर तरिया हर निध पाई सहजो। राग देव गंधारी माला पंजवा कर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद है एक कह रे हर एक कह जान, एक कह रहा गुरमुख जान रहाओ। काहे भ्रमत हो तुम भ्रम हो, ना पाई रव्या रह दे रव्या सर्वदान। जो बसंत रकाश मझार बिन संजम नाई कार्ज सार। बिन गुर ना पावे गुवर जी को द्वार, मिल संगत जब मान को नानक पाए है परम निधान। देवंगदारी मल देवंगदारी पंजवा जानी ना जाई था की गाद रहाओ। कहाँ पिखारो कहूँ कर चतुराई, बिस्मन बिस्मे कहन कहात। गण गंधर्व सिद्धर साधक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक, चतुर वेद उचरत दिन रात। अगम अगम ठाकुर अगात गुण बेअंत बेअंत पन नानक। कहो ना कहन ना जाई परै प्रात। देवंगदारी महला पंजवा त्याए गाए करने हार। पाओ नाही सुख सहज आनंदान कोई रे एक सुमार रहाओ। सबल मूर्ति गुरमय रह मत है जतगत बेकुंता तर सत है। चरण कमल मेरे प्राण आधार समर्थ था बड़ा प्रभ मेरा, कटकंत्र साहब नेरा तां कि सन आसर प्रभ नानक जख अंत न पारा वार। देवंगदारी महला पंजवा उल्टी रे मन उल्टी रे साख संग कर उल्टी रे, झूठी झूठे की झूठ प्रीति छुटकी रे मन छुटकी रे। साख संग न छुटकी रे राओ ज्यों काजर पर मंदर राख्यो, जो पैसे कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है ज्यों जिस गुर मिल छुटकी त्रुटी रे। मंग दान कृपाल कृपा निध मेरा मुख साख संग ना जुटसी रे। जन नानक दास दास को करियो मेरा मूड सात पागा हेठ रुलसी रे। राग देव गंधारी महला पंजवा कर सतमय ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के समर्थ पंथ बिठ ले हों बल बल जाऊं, गावन पावन संतन तोरै चनु आख पाऊं रहाओ। जसन बसन सहज खेल करुणा में अनंत अनु बैठाऊं।
ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਿੱਧ ਕਰਤਲ ਜਗਜੀਵਨ ਸਰਬਨਾਥ ਅਨੇਕ ਨਾਉ ਦਇਆ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗਉ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਸ ਜੀਵਾਉ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿ ਬਜ਼ਾਰਾ ਦੇਵ ਉਧਾਰੀ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾਂ ਜੈ ਮਾਂ ਨੇਕ ਨ ਕਹਿਓ ਕਰੈ ਸੀਖ ਸਿਖਾਏ ਰਹਿਓ ਆਪਣੀ ਸੀਧੁਰ ਮਤੇ ਨਾ ਟਰੈ ਰਹਾਓ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੇ ਭੈਉ ਬਾਬਰੋ ਹਰ ਜਸਨੈ ਉੱਚ ਰਹਿ ਕਰ ਪ੍ਰਪੰਚਗਤ ਗੌਡਾ ਹੈ ਕਹਿ ਆਪਣੋ ਉਧਰ ਭਰੈ ਸਵਾਨ ਪੂਜਿਓ ਹੋਇ ਨਾ ਸੁਧੋ ਕਹਿਨ ਕਾਨ ਤਰੈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਜਾ ਤੇ ਕਾਢ ਸਰੈ ਦੇਵ ਮੁਦਾਰੀ ਮਹਲਾ ਨਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਧ ਬੰਦਪ ਵਰ

0: जिन आप दयाला
1: नानक जानकी मंगेर वाला
0: प्रभु को सिमरे से पर उपकारी
1: प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी
0: प्रभु को सिमरे से मुख सहावे
1: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
1: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता
0: प्रभु को सिमरे तिन आंदन कनेरे
1: प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग
1: नानक सिमरन पूरे भाग
0: प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे
1: के सिमरन कबू न जूरे
0: प्रभु के सिमरन हर गुणवानी
1: प्रभु के सिमरन सहज समानी
0: प्रभु के सिमरन नहचल आसन
1: प्रभु के सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु के सिमरन अनहचुनकार
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
0: सिमरे से जन जिन को प्रमया
1: नानक तिन जन सरनी पया
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए।

0: हर सिमरन कियो सगल अकारा
1: हर सिमरन में आप निरंकारा
0: कर कृपा जिस आप बुझाया
1: नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक
0: दीन दर्द दुख पंजना
1: काट काट नाथ अनाथ
0: शरण तुम्हारी आयो
1: नानक के प्रभ साथ अष्टपदी
0: जह मात पिता सुत मीत ना पाए
1: मन उमा नाम तेरे संग सहाय
0: जय महा प्यान दूत जम दल
1: केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल हो वह अत पारी
1: हर को नाम किन माहे उधारी
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपहु मन मेरे
1: नानक पावो सुख नेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंद न पर

0: देवा।
1: हर हर जन के मालिक जीना,
0: हर तन जन को आप प्रभु दीना।
1: हर हर जन के ओत स्थानी,
0: हर प्रताप जन अवर न जानी।
1: ओत पोत जन हर रस राते,
0: सुन समाध नाम रस माते।
1: आठ पैर जन हर हर जपै,
0: हर का

0: साध ना करे,
1: मन तेज घमंड भी हटे,
0: जल तो वे बहु देह नीत,
1: सद का होए काची पीत,
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच,
1: नानक नाम उदरे पतत बहुच,
0: बहुत सियाण पजाम का पौ व्यापै,
1: नानक जतन का तिसना त्रापै,
0: देख अनेक अगन नहीं बुझे,
1: कोट पाद लगे ने सिजे,
0: छूट सनाही ऊब प्याल,
1: मोहि व्यापे माया जाल,
0: अवर कर तू सगली जम डान
1: गोविंद भजन में।

0: कार को तावे है।
1: मिथ्या मन पर लोभ लुभावे,
0: मिथ्या तन ही पर पकारा,
1: मिथ्या बात लेत बेकारा,
0: बिन बूझे मिथ्या सा पै।
1: सफल नानक हर हर नाम ले,
0: वृथि साकत की आर जा,
1: साच बिना कह होवत सुचा,
0: वृथा नाम बिना तन अंध,
1: मुख आवत आके दुर्गंध,
0: बिन सिमरन दे रहन वृथा बिहाई,
1: वेग बिना ज्यों खेती जाए,
0: कोविद भजन बिन वृथे सब काम,
1: ज्यों कृपन के नराज दाम,
0: तन तन ते जन जह कट वसियो हर नाम,
1: नानक ताके बल बल जाओ,
0: रहत अवर कश अवर कमावत,
1: मन ने प्रीत मुखों गण लावत,
0: जानन हार प्रभु परवीन,
1: बाहर देखन काहू पीन,
0: अवर उदेश आप न करे,
1: आवत जावत जन्मे मरे,
0: जिसके अंतर बसे निरंकार,
1: जिसकी सीख तरे संसार,
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता,
1: नानक गुण जन चरण प्राप्ता,
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जान,
1: अपना किया है आपे माने,
0: आपे आप आप करतन वेरा,
1: किसे दूज लावत किसे बुझावत नेरा,
0: पाप स्याणप सगल ते रहत,
1: सबको जाने आत्म की रहत,
0: जिस पावे तिस लै लड़ लाए,
1: थान थान अंतर रहा समाए,
0: सो सेवक जिस कृपा करी,
1: निमक निमक जप नानक हरि श्लोक,
0: काम क्रोध और लोभ मोह
1: बिन से जाए आमेव,
0: नानक प्रभ शरणागति
1: कार प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी
0: जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए,
1: तिसरा कुर को रख मन माहे,
0: जे प्रसाद सगंधन तन लावे,
1: तिसको सिमरत परम गत पावे,
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
1: तिसे त्याए सदा मन अंदर,
0: जे प्रसाद ग्रह संग सुख वसना,
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना,
0: जे प्रसाद रंग रस भोग,
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग,
0: जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावे,
1: तिसे त्या अवर लभावे,
0: जेह प्रसाद सुख सहज सुईजे,
1: मन आठ पैर ताका जस गावीजे,
0: जेह प्रसाद तुझ सब को माने,
1: मुख का को जस रसन बखाने,
0: जेह प्रसाद रहता धर्म,
1: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
0: प्रभ जी जपत दर गह मन पावे,
1: नानक पद से ती कर जावे,
0: जेह प्रसाद आरोग कंचन देही,
1: लिबला हो तिस राम स्नेही,
0: जेह प्रसाद तेरा ओला रहत,
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
0: जेह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके,
1: मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके,
0: जेह प्रसाद तुझ को ना पहुँचे,
1: मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे,
0: जेह प्रसाद पाई दुर्लभ देहे,
1: नानक ताकी भगत करे,
0: जेह प्रसाद आपूखन पहरीचे,
1: मन ते सिमरत क्यों आस कीजे,
0: जेह प्रसाद असब हस्त असवारी,
1: मन ते प्रभु को कहु ना विसारी,
0: जेह प्रसाद बाग मिलख तना,
1: राख परोए प्रभु अपने मना,
0: जिन तेरी मन बंत बनाई,
1: किसे त्याई,
0: किसे त्याई जो एक अलख है,
1: यहाँ नानक तेरी रखे,
0: जेह प्रसाद करे पुन बहुदान,
1: मन आठ पैर का तिसका ध्यान,
0: जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी।

0: प्रसाद तेरी पत्र है।
1: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
0: जेह प्रसाद सुने कर नाद।
1: जेह प्रसाद पेखे विस्माद।
0: जेह प्रसाद बोले अमृत रसना।
1: जेह प्रसाद सुख सहजे बसना।
0: जेह प्रसाद हस्त कर चले।
1: जेह प्रसाद संपूर्ण भले।
0: जेह प्रसाद परम गत पावे।
1: जेह प्रसाद सुख सहज समावे।
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो।
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
0: जेह प्रसाद तू प्रगट संसार।
1: जिस प्रभ को मूल न मनो विसार।
0: जेह प्रसाद तेरा प्रताप।
1: रे मन मूर्त ताको जाप।
0: जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे।
1: इसे जान मन सदा हजूरे।
0: जेह प्रसाद तू पावे साच।
1: रे मन मेरे तू तां सियो राच।
0: जेह प्रसाद सब की गत होए।
1: नानक जाप जपे जब सोए।
0: आप जपाए जपे सो नाओ।
1: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
0: प्रभ कृपा ते होए परगास।
1: प्रभु दया ते कमल विगास।
0: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए।
1: प्रभ दया ते मत उत्तम होए।
0: सर्वन दान प्रभ तेरी मैं
1: आपो कछु न किन्हु लिया।
0: जित जित लाभ हो तित

0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे
1: नानक जिन प्रभु आप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता।

0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पला
1: ब्रह्म ज्ञानी सो फल पला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सा जगत
1: ब्रह्म ज्ञानी बुद्ध त्यागत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइए
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक।

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अध्याखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सब जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

0: जीवन मुक्त
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ
0: जित कर राखे तैसा तिन्नाओ
1: आपे करन करावन जो
0: प्रभावे सोई फल होग
1: पसरियो आप होए अनंत तरंग
0: लखन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दे तैसा परगास
0: पार ब्रह्म करता अविनाश
1: सदा सदा सदा दयाल।

0: कई कोट आत्म ध्यान तारे हैं,
1: कई कोट कब कब विचारे,
0: कई कोट नवतन नाम ते आवे,
1: नानक करते का अंत न पावे,
0: कई कोट पहे अभिमानी,
1: कई कोट अंध अज्ञानी,
0: कई कोट कृपण कठोर,
1: कई कोट अपेगा आत्म निकोर,
0: कई कोट पर दर्ब को हिरे,
1: कई कोट पर दुख न करे,
0: कई कोट माया श्रम माहे,
1: कई कोट पर देश पर माहे,
0: जित जित लाभ हो तित तित लगना,
1: नानक करते की जाने
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी,
1: कई कोट राजे हर्ष भोगी,
0: कई कोट पंखी सर्प पाए,
1: कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए,
0: कई कोट पवन पानी वह संतर,
1: कई कोट देश भूमंडल,
0: कई कोट सस्य सूर नक्षत्र,
1: कई कोट देव दान इंद्र से छत्र,
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी, कई कोट राजस तामस सातक,
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र,
0: कई कोट किए रतन समुंद,
1: कई कोट नाना प्रकार जंतर,
0: कई कोट किए चर जीवे,
1: कई कोट गिरि में स्वन थीवे,
0: कई कोट जा किनर पसाच,
1: कई कोट पूत प्रे शुकर मिर्गाच,
0: सबते नेरे सबूते दूर,
1: नानक आप अलपत्रया परपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी,
1: कई कोट नर स्वर्ग निवासी,
0: कई कोट जन्मे जीवे मरे,
1: कई कोट बहु जुन्नी फिरे,
0: कई कोट बैठत ही खाए,
1: कई कोट काले थक पाहे,
0: कई कोट किए तनवंत,
1: कई कोट माया मह चिंत,
0: जह जह पाणा तह तह राखे,
1: नानक सब किस प्रभु के हाथे,
0: कई कोट पै बैरागी,
1: राम राम सम तिल निर्लागी,
0: कई कोट प्रभु को खो जानते,
1: आत्म मैं पार ब्रह्म लांते,
0: कई कोट दर्शन प्रप्यास,
1: किनको मिलियो राम अविनाश,
0: कई कोट मांगे सत्संग,
1: वार ब्रह्म तिन लागा रंग,
0: जिनको हुए आप सो परसान,
1: नानक तेजन सदा तन तन,
0: कई कोट खानी अर खंड,
1: कई

0: जिसके अंतर राज अवमान
1: सो नर पाति नो भस्मान
0: जो जाने में जोवन बंत
1: सो उत्पिष्टा का जंत
0: आपस को कर्म बंत कहावे
1: जन्म रे वो जोन परमावे
0: तन भूमिका जो करे गमान
1: सो मूर्ख अंधाय ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी विशाल
1: ज्ञान किया मुक्त आगे सुख पावे
0: तनवंत आहे कर गरवावे
1: तरण समान का संग न जावे
0: वो लश्कर मानुख ऊपर करे आस
1: पाल पीतर ताका होए बिना
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: इनमें होए जाए पसमंत
0: किसे न बधे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे कुवारी
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अवमान
1: सो नानक धर गए परवान
0: कोट कर्म करे हां तारे
1: सर पाद सगले बिस्थारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग में फेरे अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं दरवे
1: अदरगे को कैसे गवे
0: आप सको जो भला कहावे
1: से पलाई निकट न आवे
0: सर्व की जा का मन होए
1: को नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कश होए
1: तब इसको सुख नाही कोए
0: जब यह जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को वैरी मीत
1: तब लग निश्चल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस कटे लख कोठ तावे
1: तृप्तना आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग भी ख्या के करे
1: न तृप्तावे खप खप मये
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसे प्राप्त होए
0: कनक रावण आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कनक रावण करने हार
1: इसके हाथ का विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए
0: जो किस किन्नो सो अपने रंग
1: सबते दूर सब उनके संग
0: दूजे देखे करे विवेक
1: आपे एक आपे अनेक
0: मरे ना विनसे आवे ना जाए
1: नानक साधी रहा समाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आपकी नो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका वो करने हार
0: उसते पेन कहो किस होए
1: नानक अंतर लेके सोए
0: अपने चरिताव करने हार
1: कौतुक करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुर प्रसाद किने बखियानी
0: सच सच सत सब कीना
1: कोट मदे किन बेले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अस सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: काट

0: संत के दुखन सब को चले,
1: संत के दुखन तेज सब जाए,
0: संत के दुखन नीचन चाहे,
1: संत दुखी का थाम को नाहे,
0: नानक संत पावे ता वो पीगत पाहे,
1: संत का निंदक महा अताई,
0: संत का निंदक टिकन न पाई,
1: संत का निंदक महा त्यारा,
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा।

0: चौथे पद में सो जनगत पाए।
1: रूप सत जाका सत स्थान,
2: पुरख सत के बल प्रदान,
1: करतूत सत सत जाकी बाणी,
0: सत पुरख सब माहे समानी,
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल, सत सत उत्पत्ति,
1: सत करनी

0: सो को किसे व्यापत।
1: जब अपन आप अपार ब्रह्म
0: तब मोह कहां किस होवत परम।
1: अपन खेल आवर तीजा
0: नानक करने हार न दूजा।
1: जब होवत प्रभ केवल तनी
0: तब पंथ मुक्त को किसको गनी।
1: जब एक कहर अगम अपार
0: तब नरक स्वर्ग को कौन उतार।
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाए
0: तब से सख्त कहो कि ठाए।
1: जब आपे आप अपनी ज्योतर है
0: कवन निगर कवर कत डरे।
1: अपन चल तब करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार।
1: अविनाशी सुख अपन आसन
0: जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त के पूछत लेखा।
1: जब नाथ निरंजन गोचर गादे
0: ता कौन छुटे कौन बंधन वादे।
1: अपन आप ही चर्जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपर जा।
1: जय निर्मल पोर्क पोर्क पत होता
0: जय बिन मैल कहा क्या तोता।

0: मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप के बल जगदीश,
0: चल छिद्र लगत को की।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे,
0: किसे पू कबर तृप्तावे।
1: कर्ण करावन करने हार,
0: नानक करते का नहि समार।
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: कवन माए बा मित्र सुत पाई।
1: जय सर्व कला पेपर वीन,
0: वेद देव कहा को चीन।
1: जब अपन आप और तारे,
0: तो सगन अपसगन कहा विचारे।
1: अपन ऊंच अपन आप नीरा,
0: ते कौन ठाकर कौन कहिए चेया।
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद,
0: नानक अपनी गत जानो आप।
1: जय अशल अशेद अपेद।

0: अनंत काट कर व्यापर है भगवंत
1: कारण माया गास पयाल
0: सर्वो पूर्ण प्रतिपाल
1: अंतिन पर्वत है पार ब्रह्म
0: जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: कौन पानी बह संतर माहे
0: द्वार कुंड दे विशेष माहे
1: इसते पिन नहीं कोठाओ
0: और प्रसाद ना

0: करा।
1: आप ला कर तू तत्नी की,
0: आपे जाने अपने जी की।
1: आप साच तारी सब साच,
0: पोत पोत अपन संग्राच।
1: ताकि गत मित कही ना जाए,
0: दूसर होए दसो जी पाए।
1: इसका किया सब परवान,
0: गुर प्रसाद नानक के जान।
1: जो जाने ते सदा सुख होए,
0: आप मिलाए रहे प्रभु सोए।
1: ओ तनवंत कुलवंत पतवंत।

0: रहते
1: राम नाम समरसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक निभी कृपा हमारी
0: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
1: साहब अनेक अगर की
0: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो।

0: शंकर कैठा
1: सगरी सृष्टि दिखाए अचंब
0: आदि जुगाद स्वरूप स्वयं पवे
1: अपरेक्षा मेरी तुम करो
0: सिख आर्य सिख संगरो
1: दोष जिते उठ बात।

सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी पुत माता की आशीष निमकण बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत सुख हटल गुरु सेवी अहन सह सुभाए दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए हो सुख दुख सम दे नूरी अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह